गुरु बख्शिश करे असी मन का घर बनाइए, असी मन का घर बनाइए, मन नू उस घर नू फिर गुरु दे हवाले करिए, आखिए जी इन सजा दे ताकि मेरे प्रीतम नू चंगा लग जाए ते ओ इस घर विच आके वस जाए ते फिर मेरा ते उनका इक्को ही ठिकाना हो जाए, मेरे प्रभु का ते मेरा इक्को ही ठिकाना होवे, मेरे मन विच ओ भी वसदा होवे, मैं भी मेरी आत्मा भी वसदी होवे, एक एक एको प्याठा गुरु बख्शिश करे यो जा माहौल बन जाए, एक ऐसा मंगर का महीना होगा जदों असी ऐसा माहौल पैदा कर लवेंगे। इन्हों शब्दों कीर्तन की समाप्ति, पुस्तक की सीमा, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया पाप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया रख नहारा रखया अपनी करमया रहाओ बाह पकड़ प्रभ काढ़या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बाह पकड़ प्रभ काढ़या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गुरु की साजिदवाजी गुरु सिख गुरु खालसा सत संगत जी देव गलिया के मालिक शांति के पुंज गुरबाणी के ग्रंथ दीन दुनिया के बाद श्री पंचो पातशाह महाराज जी ने साढ़े को कृपा कर दिया है।

पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणा अख बखाणा। जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावहें हर त्यावहें तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जन हर त्याया जी तन तूटी जमकी फासी। जन निरभाओ जन हर निरभाओ त्याया जी तन का भाओ सब गवासी। जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जन हर त्याया जी जन नानक तन बलजासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप तप है जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ अवरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान होई। आस्था एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आस्था महला पहला चौब दे कर दूजा। सुन वड्डा आखै सब कोई के बड़ वड्डा जीठा होई। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाऊ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गौर गुरहाई कहण ना जाई तेरी तल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धां पुरखां कियां वड्याइयां। तुद वैणो सिद्धि कनैना पाइया कर्म मिलै नाही ठाकर हाइया। आखण वाला क्या बेचारा उसबती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊ साचे नाम की लागै भूख। तित भूख है खाई चली अमरूख। सो क्यों विसरै मेरी माई साचा साहिब साचा नाई रहाऊ। साचे नाम की दल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओ मरै न होवै सोग देंदा रहे न चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए ना को ना कोए। जे वड़े आप दे वड़ तेरी दात। जैन दैन करकै कीती रात खसम बिसारहे ती कमजात। नानक नावै बाज सनात आस्था महला चौथा। जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने। पावै तीरक पावै तके कबड़ाई दे। जानो जोत न पूछो जाति आगै जात नाही राऊ। आप कराही आप करी आपो लमे चित धरे। जा तू करण हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार। आप पाए आपे दे आपे कुदुरमत मन करे। गुर प्रसाद वसै मन आई दुखा नीरा विचों जाई। साच प्यारा आप करी वर अवरी कौ साच ना दे। जे किसै दे बखाणे नानक आगै पूछक ना ले। आसा महला पहला ताल मदीरे कटके घाट दोलक दुनिया बाजै बाजू। नारद नाचे कलका पाऊ जति सती रख कह रखुण पाऊ। नानक नाम बिटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जानो राऊ। गुरु पासो फिर चेला खाई ताम प्रीत वसै कर आए। जे सोवरिया जीवन खाण खसम पछाणे सो आन दिन परवान। दर्शन देखिया दया न होए लय दिते बिन रहे न कोई। राजा न्याऊं करी हथ होए कह कह खुदाई न मन कोई।
ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੈ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਤੇਤੀ

सब सुरती मैल सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी दिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया। तुद वैण सिद्धिक नैना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिबती परे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागै भूख, उत भूख ए खाए चली हैं दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाई रहाओ। साचे नाम की दल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै काट न जाए।

पंजवा काहे रे मान चित वह उदम जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर में जंतो पाए ता कारिज का गय कर तरया।

जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काही मन पव करिया। उडे उड़िया वैसे कोसा अंतस बाचे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन महे सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सुधान ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार भरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपार। सब त्याव हैं तुद जी हर सच्चे सिरजनहार।

तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे जोज बिड़ाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग में सुखवासी से मुकत भय जन हर त्याया जी तन तूटी जमकी फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तन बलजासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर हैं हर पूजा जी तप तप हैं जप हैं बेअंता तेरे अनेक पढ़ हैं बहु समृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाव हैं मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी बड़बर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करहे सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जन होई आसा महला चौथा तू करता सजियार मैडा साई जो तू पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हम पाई राव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया

शर्मा पातशाही दसवीं कवि बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पार हमरे दोष्ट सब तुम काब हो आप हाथ दह मुहि बचाव सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन कौ आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दह मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हो जो सदा हमारे पछा सरी अस्त हो जो कर रक्षा राख ले हो मैं रख नारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपधरा काल पाए सब जू अवधरा काल पाए कर विशन पर काशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत का अवतार सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सदरन को पल मोहम्मद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंजर अस थूला सब पर कृपा दृट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा

मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चिंतन है पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन दोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सिद जकीनी, उत्पज खान बहोर रच दीनी। कहूं भूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संगरो। दोष जिते उठवत उठपाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तो तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत वह मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हरे हो, ताके ताप धन कमो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष शाश्व सक न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल वास्ते ताई उबारा।

पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारु अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारु जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारु यही वास्तव तजी न जाई नित नित रख उधारु तम संसार चरण लग तरियाए सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवां तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस भयोई।

एक आसर शरण शरण कर आई संत अनुग्रह भय मन निर्मल नानक हर गुण गाए सतनाम श्री वाहिगुरु जी तना श्री महला पंजवां जा कौ हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसुदा कै जा का सतगुर पूरा जा कौ हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसुदा कै जा का सतगुर पूरा ठाकुर गाइय आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाउ जन के चरण वसह मेरा ही अरै संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखही जन के चरण वसह मिरही अरै संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ महला पहला एको ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता किए करते कहोए विचार हित कर गावो सुहिला सिवर सजन हार तुम गावो निर्मल पौका सुहिला हो वारी जत सुहिला सदा सो तोय राहो नित नित जी अड़े संभाली आनंद देखेगा देवन हार तेरा दाने कीमत ना पवै जिस दाती कवन कुमार संबत सा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजना सीसड़िया ज होवै सहस समेल कर हो पहुंचा सदले नत भवन सदन हारा सिमरिया नानक से दी अभन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो घर राख बढ़ाई तोय राव बिश्व जसियां कड़ियां पहराऊं दिती वारी माहवा सूरज कुरत अनेक नानक करते के किते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन जवरो करे सगल बंदरा ए फुलंत ज्योति ऐसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत फेरी राव सहस पव नैन नान नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नन एक तोही सहस पद विमल नान एक पद गंध बैनो सहस पव गंधेव चलत मोही सब मैं जो जोत है सोए तिस दा चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो मन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व परया मल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिख लिख गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडावत पुन वड्डा ही रहाओ तू साकत हर रसाद न जाने तेरे अंतर हो मैं कंडा ही ज्यों ज्यों चले चुप दुख पावे जमकाल सह सर डंडा ही हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वासो बखंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा ही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे सुख मंडा ही राग जोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इया खाड़ चलो हर राहा आगे बसल सुहेला उद कटै दिन सरण हारी मान गुरमिल काल सुहारी राव हे संसार विकार संसे मैं दर्य ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वह रस अकथ कथा तिन जानी जा को आई सुई विहा जो हर गुर ते मन बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे भोर न होए गो फेरा
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज समुचे संसार में ज्ञान का सूर्य है।

क्योंकि सानू इस गल का ज्ञान हो जाए माफ करना गुरुद्वारा पूजा का केंद्र नहीं। कई बार अं सोचते हैं कि गुरुद्वारे चलते हैं पूजा कर रहे हैं, गुरुद्वारा पूजा का केंद्र नहीं, गुरु द्वारा ज्ञान का केंद्र है। गुरु द्वारा हो सोची पाए सी गुरु ग्रंथ साहब को ज्ञान मिलता है, ज्ञान का सूर्य है। डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, परमाणुओं का ज्ञाता, आत्मिक शक्तियों का ज्ञाता, उसने गुरु ग्रंथ साहब के बारे एक बड़ी किताब ने 30 गल कही 400 साल। गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश दिहाड़े से अमृतसर की पावन पवित्र धरती से इंग्लिश में उसने पोइम भी लिखी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के सबका राष्ट्रपति ने लिख रहा है कि जरा सूरज है, सूरज ये सारे संसार में रोशनी दे रहा है। ध्यान देना, सूरज रोशनी दे रहा सारे संसार में। पेट्रोलियम शक्ति की इकाई सूरज की किरण है। मान जो सरदार ज्ञान सिंह की गल कर रहे सब गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र फिलॉसफी की, पेट्रोलियम शक्ति की इकाई सूरज की किरण है। सूरज की किरण तो तेल पेट्रोलियम ईंधन पैदा होता है। यह गल विज्ञान कह रही है कि जब सूरज की किरण बनस्पति से पड़ती है तो पौधों में रस भरया जाता है। रस वो पौधे परले आती है, धरती थले जम जाते हैं। जिथे ज्यादा गर्मी पैंती है उत्थे पौधे धरती थले दबे तरल रूप में हो गए, उत्थे तेल मिल रहा है। जिथे थोड़ी जी घट गर्मी पैंती है उत्थे कोला मिल रहा है। कोला ते मेरे गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र वाणी भी कह रही है, पासरी किरण रस कमल भी करते। वैज्ञानिक कह रहे हैं विज्ञान की गल, ज्ञान का सूरज गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी के चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं, कोई रोशनी नहीं चंद्रमा की अपनी। चंद्रमा जी रोशनी दे रहे हैं सूरज की किरणों में ही पारदर्शी करके दे रहे हैं। विज्ञानी अज कह रहे हैं मेरे बाबा जी ने आपको 500 साल पहला यह सच कहा है, पसरी रस किमत रस किरण पसरी किरण रस कमल बिगाते सच घर सूर समाया है। सूर्य समाया होया है। आज पेट्रोलियम की शक्ति संसार में सूरज दे रहा है। सूरज रोशनी का स्रोत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बड़े फटन वाले गल कह रहे हैं कि ज्ञान की रोशनी सूरज भी गुरु ग्रंथ साहब को ले रहा है। सूरज भी गुरु ग्रंथ साहब को ले रहा है और गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी तो सूरजों का सूरज है। सूरजों का सूरज क्यों? क्योंकि परमात्मा के गुरु की बड़ाई है, परमेश्वर के गुरु की बड़ाई है। गुरु गोबिंद सिंह साहब आ रहे परमात्मा ने पाई नमस्कार कर रहे हैं। मेरा सूरज सूरज मेरा चंद्र चंद्र है। आ परमात्मा मैं तेन पाई नमस्कार कर रहा, तू सूरज बनाने वाला है। मैं तेन पाई नमस्कार कर रहा, तू चंद्रमा बनाने वाला है। परमात्मा के गुरु की बड़ाई है। गुरु गोबिंद साहब की पावन

बड़े की बात कहते हैं आगे बंगाली हरिमंदर साहब जिन्हें बड़ी काबले तरीफ गल्ला दो गुरबाणी ने प्रथाएं लिखिया ने बहुत कुछ लिखिया हरिमंदर साहब टैगोर मेरे पिता जितेंद्र नाथ टैगोर जो संगीत के बड़े टायर सन और बहुत सारा संगीत उन्होंने रच के गाए हरिमंदर नाथ टैगोर की लिखिया हुई दो लाइन हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तराना बन गया लिखिया हुई दो लग में जन गण मन अधिनाम एक जाया है भारत वासियों ने दाता हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तराना उस रविंद्र नाथ टैगोर ने पूछा किसी ने रविंद्र नाथ टैगोर तेरे मुख विचों निकले हैं दो लग में हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तराना बन गए ने जे तेन कोई अंतरराष्ट्रीय गीत लिखवाने कहे अंतरराष्ट्रीय गीत जरा इंटरनेशनल बन जाए की लिखेगा वह बंगाली रहते रविंद्र नाथ टैगोर कहना मेरे इतने शक्ति नहीं मेरी गल पिछे शक्ति नहीं कि मैं कोई अंतरराष्ट्रीय गीत लिख सका अंतरराष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय गीत गुरु नानक देव महाराज लिख गए ने लिख गए ने उस दिन गुरु नानक पातशाह के पावित पिता इस शब्द में पढ़िया गगन में थाल हर चंदीप मने तारिका मंडल जनक बोती धूप मने हमरे पवन चावरे करे बादल धराए बुलंद बोती ऐसी आरती हो तब खंडना तेरी आरती अनहता सौदवर अंत पेरी सच जान लो शब्द समुद्री मनुखता कला दे रहे हैं जब अं पढ़िए ना साहित्य मैन मन मैन है मैं कहो जब सारे संसार के मैना की गल होती है सारे संसार के करने की गल होती है तो सारे संसार कला दे रहे हैं शब्द रविंद्र नाथ टैगोर कहते गुरु नानक

टेस्ट लेना है ना, मेरे वो लैसी आदमी इस करके मैं डरदा लुटिया बिच कहते गुरुद्वार के भाई ने आखिया अजूबिया ना मैं तेन कलाम पढ़ाऊंगा तू आ शब्द पढ़ मेरे पिछे पिछे बोल तो वो पढ़ के तू स्कूल चला गया तेन कुटनी पड़ी कहना गुरुद्वार के भाई ने मैनू गुरु नानक का यह मूल मंत्र ए कलाम मैनू पढ़ाया फिर मैं सुने अखर लिखे ला है जब मैनु एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक इस पावन पवित्र शब्द का जाप कराया मैं स्कूल चला गया मैनू कुटना पड़ी मैं कुत्ता बच गया अगले दिन मैं फिर गुरुद्वारे आ गया गुरुद्वारे के भाई ने आखिया मैनु यह शब्द फिर पढ़ा फिर उसने मैनु पढ़ाया मैं रोज शब्द गुरुद्वारे के भाई को पढ़ता रहा।

0: सब तेरे दर पे आए, हाथों में लेकर फूल गए। हर एक दे मन में श्रद्धा प्रेम सत्कार है। मैं समाप्ति करा, प्रबंधक सज्जनां वल्लों हुकम हो गया है, पर यह गल मैं तां कहण लग्या कि हर एक सिख दे मन में यह सत्कार श्रद्धा भावना है भी जदों गुरु घर आउंदा है, गुरु द्वारे आउंदा है, कुछ ना कुछ लैके आउंदा है, हाथ में लैके आना भी चाहिंदा है। जब हम तेरे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए, वो गिरना पर्वत का, वो फिरना मक्के का, हर शह तुम्हारी याद रही। असी गुरु दिया कथा कहानियां सुनते हैं, असी सोचते हैं कि शायद पौधे का तपता कड़ाहा गुरु साहब ने ठंडा किया, तो अपने आए तपते कड़ाहे की कभी असी गले नहीं सोची भी जरा साडा तपता कड़ाहा हर वे तप रहा है। जियो तपता है बारो बार, जरा हर वे तप रहा है, कि गुरु के बचन साडे हिरदे विच भी बस जान। माफ करना, पौधे ने गुरु नु सुनिया, जो सुनिया ना अराक्षपना त्याग के गुरु नानक के घर का प्रचारक बन गया। सज्जन शेर जिन्हों अभी सज्जन ठग कहने, उन्हें गुरु ने सुनिया, बस जब सुनिया ना, अज भी उन्होंने सज्जन ठग कहने। माफ करना, वह ठग नहीं रहा, वह गुरु के बचना सुन के गुरु नानक के घर का प्रचारक बन गया। प्रचारक आप गुरु की विचारधारा में जुड़िया, तो उन्होंने गुरु की विचारधारा में जोड़िया। देखो अज असी की जुड़ना से, असी तो आप नहीं जुड़े, अपने बच्चों नहीं जोड़ सके। अफसोस है इस गल का। मुबारक है जिन्हें आप जुड़े ने अपने बच्चों, परिवारों में गुरु की विचारधारा में जोड़ रहे हैं। जब हम तेरे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना मक्के का, वो गिरना पर्वत का, हर शह तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। अज असी गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांतों तो दूर होंगे जा रहे हैं। आओ गुरु कृपा करे, गुरु रहमत करे, गुरु बख्शिश करे। ऐ मैं बधाई दिना कि तुसी विदेशों में रहिंदे होए भी धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन पवित्र बाणी नाल जुड़े हो, अपने धुरे नाल जुड़े हो, आप गुरु की पावन पवित्र विचारधारा नाल जुड़े हो। मैं इस गल की तुहानू बधाई दिना, अपने धुरे नाल जोड़न वास्ते ऐ गुरुद्वारा साहब बनाए ने। दान संबंध सज्जना वालों, सियाने सज्जना वालों सोच है, ताकि असी साडे परिवार साडे बच्चे मूल गुरु ग्रंथ साहब के पावन पवित्र बाणी नाल जुड़े रहन। इन्हां शब्दां नाल ही होइयां भुल्लां दी खिमा, प्रबंधक सज्जना वालों दिता समाप्त है। इतिहास के मान सम्मान अंदर बहुत सारा प्यार सत्कार सिख संगत वालों आया, तय दिलो धन्यवाद। साडा जथा मान योग सरदार ज्ञान सिंह जी दस रहे सन कि असी 1 जून नू आए सी इंडिया तो, 2 बच्चियां सन भाई साहब दियां भतीजियां साडे नाल, पर 26 जून नू उस बच्ची नू अटैक हो गया सी अधरंग दा। गुरुद्वारा सुख सागर सिंह सभा गुरुद्वारा साहब ने सानू बुलाया सी, 1 महीने लिए उत्थे भेजिया सी। 1.5 महीना तकरीबन हॉस्पिटल विच उस बच्ची जेरे इलाज रहे, बहुत पैसा खर्च आया, 2 प्रबंधक कमेटियां और सिख संगत ने रल के उस बच्ची के इलाज से पैसा खर्च किया। 1.5 महीने बाद वो 2 भैं वापस की नहीं गई। प्रबंधकों की दयानतदारी साडा जथा तो नहीं रहा, प्रबंधकों की दयानतदारी का सदका सानू रखा गया भी जितना चिर तुहाडा समा है तुसी संगतां की सेवा करो, ते ओ दयानतदारी की बदौलत प्रबंधक सज्जना वालों सानू कुछ दिनों वास्ते इत्थे भेजा गया। जगत गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जो कल नू है सिख संगतां वालों अगले संडे नू मनाया जाना है, इसलिए उतने समय वास्ते असी तुहाडी सेवा विच हाजिर होए। जथा तां नहीं पर संगतां दा प्यार, संगतां दे प्यार दी बदौलत कोशिश करांगे गुरु दे सिद्धांतां दी गल संगतां तक पहुंचाई जावे। इसलिए संगतां दे दयानतदारी प्रबंधक सज्जना दे प्यार दा सदका असीं तुहाडी सेवा विच आए हां, ते जिस तरह गुरु नूं भावेगा उसे तरीके नाल सिख संगतां दी रहिंदे समय विच सेवा करांगे। होइयां भुल्लां दी खिमा जी, आओ प्रेम सत्कार नाल सारियां संगतां आपां
1: ਕੇਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सत्संग जी वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी। संसार की विचारधारा इस तल से खड़ी है, कुछ प्राप्ति हो जावे, भाग वड्डे, कर्म चंगे, किस्मत चंगी, कर्म वाला, कुछ कोलों खुश जावे ते कर्म माड़े, किस्मत माड़ी, नसीब खोटे, धन मिल जावे, पदवी मिल जावे, सोहनी सुंदर काया मिल जावे, औलाद मिल जावे, जायदाद मिल जावे, गल्लां करदे ने ते कर्म चंगे ने, भाग चंगे ने।

Pastor. जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, पहली टोक है जो आ गए उन्हां दे सब तो वड्डे भाग, पर जेड़े नहीं आए तिरग जीवे तिरग जीवास। जीवे कहिए पास टेंस लंघ चुके समा, जिन्ना समा जिंदगी दा उन्होंने गुजारिया मार्ग कहंदे तिरग। जीवास जीव जमा आस आउण वाला फ्यूचर टेंस, जो गुरु दी संगत विच गुरु दे चरणां विच नहीं आउंदे वो जिन्ना पिछे जीवे है वो भी तिरग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे जिन्ना गाहां नूं जीवणा है वो भी तिरग। पल्ले की पिया लंघ चुकया भी समा त्रिकार, आउण वाला भी समा त्रिकार। सौ बार किसे नूं फिटे मूह कहिए ते इक बार तिरग बणदा। एक गबला टेंस रह गया प्रेजेंट वर्तमान, एक व्याकरण दे विच सूत्र है, उस सूत्र का नाम है कटा कुंडल न्याय। लघु कौमदी सिद्धांत व्याकरण का एक ग्रंथ है संस्कृत का, जिसने सारे पालनी दे व्याकरण का निर्णय किया। कटा कुंडल न्याय, कटा कहंदे ने जिन्हों आप कड़ाहा कहने, जिले भी कड़ाह प्रसाद चौल बनाई देने कटा कड़ाहा। कुंडल उदे दोए पासे कुंडे नहीं होंदे तकन वास्ते कड़ाही दे, दो पासियां ते होंदे ना कुंडे, वो दो पासियां तो कुंडे नूं चक लो ते कड़ाही दा गब्बा आपे चकिया जांदा है। अज फिर को सतनाम हाथ लाउण दी लोड़। कटा कुंडल न्याय, दो कुंडे फड़ ले गब्बा चक हो गया ना आपे। एक आद दा शब्द ले लिया एक अंत दा ले लिया ते मद दा आपे आ जाना है। कटा कुंडल न्याय, तिरग जीवे लंघ चुकया समा, तिरग जीवास आउण वाला समा ते मद वाला आपे आ गया। भाई साहब भाई गुरदास जी दी वारां पढ़ो तां उन्होंने पहली वार दी पहली तुक विच न्याय वरत्या। पहली तुक नमस्कार गुरदेव को, हुण इत्थे गुरदेव गुरदेव ते थोड़े विच भी पंज सत बैठे होने अज कुल सतनाम। टोरंटो बहुत आने, फलौर बहुत है, जगरावा बहुत है, गुरदेव

0: महाराज कहते जिन्हें होमे नहीं छड़ी उन्हें कख भी नहीं
1: छड़िया
0: हो त्याग कहां को त्यागी जिन्हें मैं नहीं छड़ी उन्हें छड़िया ही थी ऐसे जेड़ा हो मैं ना गुरमुख प्यारे हो ये जड़ है जड़ आपां जद खेत बोंदे हुंदे आ ना और इहदा जी चिकरा तूत वो ट्रैक्टर च फसण लग जाने कुहाड़ी दे के चांक दीदे जीरी बढ़ ली जद फिर ट्रैक्टर लेके फिर फसण लग गए जेड़ा चांकोंगे दरख्त दोबारा फुटी जाने दुख ना मनायो आ जेड़े थोड़े बहुत कर्म धर्म जे करते हैं ना ये हौमे दे दरख्त नूं छांकदे आ आपां जड़ लगी हुई है फिर फुटी जांदे इन्हें फुटी जाना ते आपां ने तुरदे बनना अज के आखो सतनाम लभना कखे नहीं गुरसिख प्यारे जे जड़ तो हौमे कढ़नी है ना जड़ तो दरखत का पत्ता तोड़ो पत्ता सुक जू टाणी तोड़ो टाणी सुक जू टाणा वड्डो टाणा सुक जू छिल तार दो छिलक सुक जू मुड वड्डो ते मुड सुक जू पर गुरमुखो जे जड़ बढ़ दो सब कुछ आपे सुक जांदा है जड़ है जड़ जब तक जड़ अंदर है पत्ते टाणियां फुटी जानी है सतगुरु गुरु महाराज जी बारा से बधीक शब्द विच इहदा नुक्ता दसदे ने तुहानू जे होमे दी जड़ कढ़नी है जड़ महाराज कहिंदे गुरमुख सिउ कर दोस्ती गुरमुखां नू मित्र बनाओ गुरमुखां नाल फ्रेंडशिप पाओ गुरमुखां नाल रिश्ता जोड़ो गुरमुखां नाल दोस्ती पाओ पैसे कहड़ा घटते सिख कहते महाराज गुरमुखा नु दोस्त बनाइए वो तो आप गजहरा चकी फिरते हैं भुखे मरने कदे कि रोटी खाने कदे कि दोस्त बनाइए किसी MLA मेयर नु जेड़ा कोई पंपदार परमिट दे गुरमुख सिउ कर दोस्ती की मिलूगा गुरमुखा की दोस्ती तो सतगुर सिउ लाए चित आई मिलना थानू आ जरा कूड़ विच चित लगे वह कूड़ कूड़े ने लगा ए गुरमुखा की दोस्ती सच्चे सतगुर नाल जोड़ दूगी फिर की मिलू जब तू सच्चे सतगुर नाल जुड़ गया ना फिर जम्मन मरण का मूल कटी है जड़ा जन्मा मरना बिच हों बिच आया हों बिच गया हूं भी तो तुम किट हो हूं तुम कह के नहीं आए घरद मैं दुआन सुन चले हैं मैं गुरुद्वारे चले हैं जाके तो तुसी होर पारा चढ़ जाना है मैं अज दो घंटे सुन के आए सतनाम आन लगे भी मैं जान लगे भी मैं आ हाल होया बेचारा हूं हस्पताल लेके मेरे वर्गे नूं पाके 106 डिग्री टैंपरेचर ग्लूकोज भी लग गया पेंसिलिन भी लग गई पट्टियां भी हो गई जद रिलीव करया उस छुट्टी की टैंपरेचर 108 हो गया कोई सतनाम की फर्क आ जेड़े असी ग्लूकोज लाने ना थोड़े अच्छी रह जाने होम बिच आया होम बिच गया आन लग्या भी मैं गुरुद्वारे आए हैं मैं गुरुद्वारे नूं चले हैं जाके कहोगे मैं आया है गुरुद्वारे से जमन मरण का मूल कटी है मूल जमन मरण दा मैं हौमे जे ओ जड़ कट हो जावे 84 लाख दियां टाणियां मुड़ के फुटनियां ही नहीं आज के आखो सतनाम महाराज कहंदे प्रेम मैं दा परे हो जाना मैं बिचो निकल जानी बस ओही वस्ता है जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी अगला सवैया 10वां सवैया कुछ अज विचार करांगे गुरु की कृपा नाल कुछ कल समाप्ति आओ सारी संगत अदब सत्कार श्रद्धा दे नाल बैठ के ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

नानक पवे ना पेख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए बंज प्रवान बंज प्रधान बंजे पावे दरग मान बंजे सोहे हैं अंदर राजान पंचा का गुरी ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दह का भूत संतोख साब रख्या जन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबले उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस दे पार तले कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखया बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखया किता होए किता तान सवाले रूप केती दात जाने कौन कूत किता बसाऊ एक कवाऊ तिस ते होए लख दरियाऊ

कि अजब स्वरूप है किम तो भूत है किम तो बसाए के आत्म प्रवाहें गए जनक नांगा किम तो अपंग है मद पार छंद तब प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भरिया गांजू हर नर पर पांजू गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नरिया खांडू भर नरिया मंड अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जयांग आसन अपांग उपमा पार गात्मित उदार जल थल मांड दिस विश भंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अन पवनाश त्रित धर तुराश आजन बाह कैसदाह ओंकार आद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल गुर कर प्रणाम चरण नाम अंश जगात जिजन बात अन चंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अंठट अपार अडीट धर्म अत टीट कर्म अन वर्ण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करुणालय है अर काल्य है खलखंडन है महमंडन है जगत ईश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है परते पर है करुणा कर है जप जप सप सप है अकृत अकृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणाकृत है कृत कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत अमृत अमृत है जपाकृत अमृत अमृत है नरनायक हैं खलगायक हैं विश्वम्बर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं बहुभंजन हैं हरगंजन हैं रिपदापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर है परमात्मा हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं दस के जास हैं पुजंग प्रजाशंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूपे नमो ब्रह्म दतंग दतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंब भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे अनंगी नामे तर पंगी तर काले रंगी अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय पया भय अपूव जुवनाश काश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख भेख नाम काम घाटा नाथे परमाते जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणासे गंजल नामे समाज तुल निवासे निरकामंग विभूते समाज तुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी क्रीमल बनंदा समाज तुल निवासी अजय विभूते जैव गरीमय हरियंग गरीम हेमय जदर जगर वर्ति जदर जगर भूते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वज्योते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतर जगर वर्ति जदर जगर भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे

तव प्रसाद सवैये को ओंकार सतगुरु प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के अनेक प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दे कर संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे मत को न देखे प्राण पति के सरी भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिनय रति के मातिम दंग जर जर संग अनूप दंग सरंग सवारी गोट दरंग कुरंग से गुर तय पवन के गौन गुजात निवारी पारी बजान के पू पली वेद न्यावत सीसना जात बिचारी ते पाए तो कहां पाए पूपत अंत को ना के पाए पदारी जीत फिर सब देश दसान को बाज ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारी भूत भवैख भगवान के भूपत गौन गणे नहीं जात बिचारी सरी पात सरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दैन मदान सुसंजम ने मन एक वसेख है वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुवान कपेख है पौन हार जति जतार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान भजबन भूपत एक रति बिन एक न लेखा है शुद्ध सुभा दुरंत सुभा सुसा सुना दुर्जान दलेंगे बारी गमान पर मन अहकार पर विद्वान खाली रहा लेंगे दौर रीर मरोर मवासने मातृ नंगन मान मलाएंगे जे नार सरी पद के पर सह भाग ते नर फेर न दे तर आएंगे कहाँ पे जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो न हाथ फिर लिये साध समुद्र न लोग गयो पर लोग आयो बास कियो बख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह सुबायो साज कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो जन ही प्रभु पायो काहू लै पान पूज धरियो सर काहू लै लिंग घरे लटकायो काहू लख वर बाजी दिशा मैं काहू बछा कोसी सुनवायो को बदान को पूजत है पास को मृदान को पूजन तायो गुर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द तां गाव हरि के रामन जिनि वसाया कहे नानक आनंद सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो अरनादे अरनाद रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला स्वरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा ए करदा तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर दे रहे साचा नाम राधारू वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित करधारिया पंच दूत तदवस किते काल कंटक मारिया तुर कर्म वाया तुद जिन का उसे नाम हर कह लागे कहे नानक तै सुख हुआ चित कर अनहद वाजे

कहे नानक होर आंदरा सा विसरे जा हर बस मन आए ए शरीरा मेरे यार तुम मैं जोत रखी दा तू जग मैं आया जोत रखी तुद बिच दा तू जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जन जी ओ पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी दा तू जग मैं आया मन चाव पया प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल न सखिए सुख दुख न व्यापे गुर चरण लागे जन सुभागे अपना बिर जापे आन हत वाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया गे कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मैं आया जनार तेरा रचन रचया सवर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखया पाया कहे नानके शरीर प्रवान हुआ जन सतगुर संजो तलाया

0: आपने आप सा जीव आपने रचियो ना
1: ताकि करा संदेश जाओ दाता के साथ देवे करे तो

तेरे खंड सुचे ब्रह्मंड सुचे तेरे लो सुचे अकार सच्चे तेरे करने सिर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवा सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशा सच्चे तुदाखे लख करोड़ सच्चे सत्तान सच्चे सज्जो सच्ची तेरी किप सच्ची सला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला।

0: सगली धरती माल संवर्तन सरजा नानक मुझसे ज्ञान में होने खाए गया जंकाल महला पहला
1: वाइन चिले नचन गुर पैर हलायन फिरन सिर ओडो डरावा चाटे।

निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान। सेवक सेवा कर्म छड़ाओ पिनी रेल जिना मचा, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक ठल वरोले बहुत अनंत, लटू मधानियान गा पंखी पौंदिया लैण न सा, सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गंत नाम से। बंधन बंद पवाए सोए पै कित नचै सब कोए नत न छ।

होवे होव जाति जिसी खोवे होवच मूर्ख होव सियाणा मोख मुक्ति सा न जाना होवच माया हो मिछाया हो में कर कर जंतु पाया हो में बुझे ता दृसुजे ज्ञान वे होना कत कत लुजे।

इन्हीं जनता के वास्तविक नहीं सदवे की जब पाया इतना में तुम्हें मैं का पुत्र खुआया कृपा से जाने जिसे सुझा बुझाया सहज ही सत समाया सहज ही।

0: गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तरना जाय, तोती टिक्का तेज पुमानी तान लेछा खाय। मंत्र पूजा पड़क ते बासंगन तुरका पाय, रोडी ले पखंडा नाम लिए जाय त्रंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास छुरी बगायन तिन गल ताग,

0: पर तन रूप कनी सुतक कन पहला सवारी खा नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाय महला पहला
1: सब सूतक परम

0: वस्तु अंतर समान दूजी हो साहेब सेती हुक्म ना चले कई बने अरदास होवे
1: नानक सिफत विकास महला दूजा
0: नाल इयाने दोस्ती वाढ़ा रुचो ने पानी अंदर लीक जो सिद्धा था न थे महला दूजा
1: होए इयाना करे कमान न सके जा
0: जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चक्कर लगे।

0: आपे भांडे साजी ना पे पूर्ण दे इकनी दुध सुमाई है एक चुले रहन खड़े एक ने हाली पैसन कुप रहन खड़े इना सवारे नानका जिनको नदर कहे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ, ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਗੁਰੂ, ਮੀਰਾਨ ਮੀਰ ਗੁਰੂ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਰਵੰਸ਼ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੇਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਫੌਲਾਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੋਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਸੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, कमजोर लोगां दा कर्म हुंदा है। अपनी कमजोरी नूं, अपनी निर्बलता नूं जाहर करन लई लोग सुगंधां भी चुकदे ने, लोग कसमां भी खांदे ने, पर ये भी एक सुभाविक विचारधारा है, क्योंकि दुनिया विच कई बारी ये लहर भी शुरू हुई कि धर्म जो है वो कोई बहुत ही महानता नहीं रखता। लेनिन ने ये गल लोगां नूं कही सी, धर्म ते कफीम दी गोली है, जिसनू पारसा लोग, धार्मिक आगू लोग लोगां नूं दे के नीम बेहोशी विच रखण दा यतन करदे ने। इसे लई कार्ल मार्क्स दी विचारधारा नूं लेनिन ने, स्टालिन ने, कुछ होर लोगां ने भी प्रचारन दा यतन कीता, ते थोड़ा समा पंजाब विच भी साडे नौजवान बच्चे बच्चियां कहन लग पए सन ये धर्म ते अंधविश्वासियां दी बात है। पर धर्म दी जो थ्यूरी है, जदों तक धर्म उपर अंधा विश्वास होवे ना, मनुख उदों तक धर्मी बन ही नहीं सकता। धर्म दी पहली मंजिल है, धर्म दा पहला कदम है कि ओदे फरमान तों, ओदे हुक्म तों सिर दे देना, अपनी जिंद जान कुर्बान कर देनी, ते ए विचार ना करना कि ए हुक्म ठीक है कि सही है। जदों सिख ए सोचन लग पैंदा है कि गुरु दा जेड़ा हुक्म है ओ ठीक नहीं, ओ मुनासिब नहीं, गुरु महाराज नूं ए गल तां इंज करनी चाहीदी सी। काफी सालां दी गल है, पर बहुतियां दी नहीं। खालसा कालज दे तामीर करन वाले बजुर्गां विच्चों एक बजुर्ग दे बेटे जेड़े गुरु रामदास जी दे हाई स्कूल विच ही प्रिंसीपल सन, वो कहन लगे, हुण ते भाई जी जमाना बदल गया है। जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने हुक्म कीता सी, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार जप साहिब, उदों ते लोग के 7 बजे सौ जांदे सन, ते 7 बजे कोई सौ जावे ते अपने आप के 4 बजे जाग आ जांदी है, अख खुल जांदी है। उदों बिजली दा साधन नहीं सी, आ होर साधन नहीं सन। हुण ते लोग 12 बजे तो बाद सौंदे ने ते अपने आप ही देर नाल उठदे ने। जिहड़ी गल उन्हां ने कही, जिस संबंध विच आरंभ विच भी बेनती कीती, वो कहन लगे, जे कि गुरु नानक साहब जी हुण आउंदे, मौजूदा समय विच हुंदे, ते वो दिन ते 10 बजे नूं अमृत वेला कहंदे। ऐसे लोग भी ने, दासरे ने उन्हां नूं अर्ज कीती, नहीं, सिख धर्म दी बुनियाद उस अबदल हस्ती ते रखी गई है, जेड़ा बदलदा नहीं है, हर समय विच है, हर थां विच है। दैर में तू, हर्म में तू, तेरा नहीं निशान कहां, मेरी जबीं तो एक है, सजदे करूं कहां कहां। सब थां थावां विच तू ही, जिथे भी देखते हां, जिथों तक नजर जांदी ये तू ही तू है, तेरे तो इलावा कोई होर दूसरा मैनू नजर नहीं आंदा, प्रतीत नहीं हुंदा। मैनू हर जात विच अपने भी बड़ा जाति पाति दा रुझेवा है, जिन्हां चीज़ां नूं दशमेश पिता जी ने मिटाया सी उन्हां नूं असीं फिर उसारन दी कोशिश करदे हां। पर पुछो भाई नंद लाल जी तो, वो कहंदे ने, सिर्फ आदम जात ही नहीं, जितनी कायनात है हर एक विच ते मैनू अपना मित्र नजर आंदा है। फिर दसो, मैं अपने साजो सामान दियां गंढड़ियां पोटलियां बन बन के किधर तुरिया फिरां, क्यों गैर आजाद पाक्ष नेस्त दर हर जा के मे बीनम भुगो गोया कुजाबे गुजारम ई दुनिया ओ अहल्हा। भाई साहब भाई नंद लाल जी दूसरी गजल कहंदे ने, जेड़े लोग ए उपदेश देंदे ने, घर बार छड़ के रब नूं प्राप्त कर लईए, जेड़े लोग ए समझांदे ने, घर बार छड़ के अपने बच्चियां नू अपनी पत्नी नू मां बाप नू छड़ के किसे कंदरा ते गुफा विच जा बैठिए उथे रब प्राप्त हो जाएगा। नंद लाल जी कहंदे ने ए ते ओहो ही गल है कि कोई सुहागण घर विच सौ वसदा होवे ते उनू देख न सके ते लोका तो मता उपदेशे मता पुछे उपदेश प्राप्त करे कि शहो किवें प्राप्त हुंदा है, शहो कित्थों मिलेगा, किवें प्राप्त होवेगा। हजूर कहंदे नहीं, ऐसी विचार धारा नहीं है। सोए रही प्रभ खबर न जानी, होर भया बहुर पछताने, आशा महला पंजवा। हाँ, ओ ते अकाल पुरख वाहिगुरु नाल है, अंग संग है, ओ ते दूर ने।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह दा बख्शा नारा बुलंद करो, सारिया संगतां सब आए भाई बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारिया संगतां सब आए भाई भागा वाले आ गुरु के दरबार विच, गुरु दे घर दे विच सब संगतां सब आए भाई पहुंचिया हन। आपां हुणे हुणे कथा दा आनंद माणे आ, हुण आपां ढाडी राग दे राहे ढाडी वारां दे राहे अपना इतिहास गुरुआं दा इतिहास आ जिहड़ा उह ढाडी जत्थे पासों सुण लगे आ। आओ अपनियां रुचियां जिहड़ियां सारियां संगतां अपने ख्याल आ जिहड़े ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ।

0: तेरे मौत ही इंतजारो मैं जन्म पर नहीं तेरे मौत ही इंतजारो
1: नानक दीदियां लाता ना क्यों दे मती दास नू मारा रिश्त नचिया जुल्मा दा दिली बिच फिरे हर

0: वाहेगुरु जी की फतेह फतेह बोलो
1: वाहेगुरु जी का चाल चलता वाहेगुरु जी की फतेह
0: वाहेगुरु जी की फतेह।

दावो गले गरीबानू गरीब नवाज जाके लोकना सोख बाओ गरीब नवाज जाके लोकना सोख बाओ लावो गले गरीबानू नवाज जाके लोका धोखवाओ गरीब नवाज जाके लोका धोखवाओ चक्कर तो चला।

0: गुरु तोड़ी गतिया ने आई सारे गुरु तोड़ी गतिया ने आई
1: देखो किनिया खुशियां जड़ियां कठिया हुई धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जिन्हों का प्रकाश दिहाड़ हाड़ा जेड़ा मना रहे है मनाया जा रहा है कंपते तो सतगुरु नु भी रुपये दिते करो ते सतगुरु ने जाके सच्चा सौदा खरीद लिया गुरु का लंगर बना के गरीब गुरबिया नु साधु संत महात्मा नु छका दिता भी रुपये ऐसे भी रुपये गुरु के लंगर दे विच पाए गुरु नानक साहब महाराज ने ऐसी एफडी कीती है कि जेड़े कदे गुरु का लंगर घटदा नहीं थुरदा नहीं आ टैक्सिया वाले वीर है तिन्हां ने तिन्हां दे उन्ना बड़ा भारी उद्यम कीता अगे भी कराउंदे रहिंदे आ अखंड पाठ सारे टैक्सिया वाले वीर है जेड़े सामने इकट्ठे होके अपनी कमाई है जेड़ी ए सफले कीते है ते गुरु के लंगर है जेड़े अमृत वेले तो लैके चली जा रहे है गर्म गर्म जलेबियां जेड़ियां ओ कड़ कड़ संगतां नूं छकाए जांदे हन गुरु के लंगर विच ऐसी एफटी कीती धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह ने कहंदे ने संत बाबा आत्मा सिंह जी टूसिया वाले महान साधु सन रब नाल जुड़े हुए सन ऐसे साधु सन संत बाबा आत्मा सिंह जी महापुरख ए तीन चार संत जेडे इको समय दे विच हुए हन बड़े शक्ति ते भगती दे ए पूर्ण संत सन साधु ता होर भी बतेरे हन पर जेड़े नकली संत ना उन्हां दा असीं नाम ही लैंदे गे संत बाबा आत्मा सिंह जी टूसिया वाले जिन्हां दी फोटो आ बहुत वड्डी सिख अजायब घर दे विच श्री अमृतसर साहब भी लगी हुई है कदे जाओ दर्शन करन वास्ते आपां गल कर रहे हां धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा जेड़ा संगतां मना रहियां आपां चार क दिन हो गए उदो ढाडी सिंह पासों सुनिया सी वे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह ने चार उदासियां लाईया हन संसार दा उधार करने वास्ते एक छोटी उदासी सी सिद्धा ना गोश्त दे एक पंजवीं उदासी सी पर छोटी जी उदासी सी इस तों बाद महाराज करतारपुर विच टिक गए महाराज पहोवे भी गए जिथे गतां हुंदियां हुण भी तुसीं जाओ ना ते उत्थों दे पंडे आ जिहड़े आवाजां मारदे आ बाबा जी आ जाओ थोड़े गत कर दईए धन गुरु नानक साहिब महाराज भी गए महाराज नूं पंडे कहण लगे महाराज बाबा जी तुसीं आपदे गत करा ना तुसीं गत करा जाओ महाराज कहण लगे साडा तां कोई मरिया ही नहीं गत की कराई।

हर सज्जन पग पे आए, कदम दा गुरु आवाज़ां दे रिया सी, आख रिया सी भलिया गुण ही कट्ठे कर रहे हैं। जेड़ा गुणा नू इकत्र करके हार बना लेना है ना, श्रृंगार बना लेना है, इससे ते प्रभु रीत दे। गुण इकत्र कर ले, ख्याल तक गुरु ने बाणी चाख कहने लगी,

मिथे से पहचान वाली है आने वाला समय से भल रहे किसी के मिलाप नक के उनके मिलाप का साधन अपना ले फाल्गुन का महीना की है इसे भी फग्गुन नहीं लिखे ने फाल्गुन कहने लगे पता ही गुणा का फल की है जिनके कुल गुण एकत्र हो जाते हैं उनके गुणा का फल की है की लगता है फल उपजदा की है उपार्जना की है गुणा नु फल लगता है प्रभु प्रगट हो जाता है उथे जिथे गुण हो गुरु ने बाणी अंदर इसलिए आख्या कह लगे जे गुण होवे गंठड़िया जे गुण होवे गंठड़िया मेलेगा सोई जे एक बार मिलाप नसीब हो जाए फिर मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होए जे तेरे को गुना हो गंठड़िया जरूर मेरे देने के पर हो उल्ट रहा है गुण पहले तो इकट्ठे ही नहीं किए जा रहे जे कुछ होन भी तो चोर लुट के ले जाते थे गुरु ने आख्या कहने लगे

क्या जीवन था पूर्ण समाज में चला गया, जिससे कोई सुनना ही नहीं। सुन के मैंने जीरो सुन का अर्थ की है हिंदी में, सुन के नुकन जीरो जीरो की हिंदी कुछ भी नहीं। जिससे सब कुछ मिट जाए, खत्म हो जाए, असं अपने पुराना तो जीरो हो गया। गुरु कहते कौन संत है राम का जो अपने आप में जीरो हो गया, कहता मैं बखरा कुछ भी नहीं।

ना मेरा कोई घर, ना मेरा कोई पिंड ग्राउंड, ना मेरे कोई छन छपरी, ना मेरी कोई इमारत, ना मेरा कोई महल, ना मेरा कोई डेरा। कहने लगे हुण ते इथो तक गल पहुंच गई है भी जे रब पुछे ना ये कौन है ते मैनू ये दसना भी औखा है कि मेरा ना कबीर है, मेरा ते ना ही कोई नहीं रहा। हुण ते जे अपना ना दसा तो इहदा मतलब अपनी होंद कायम है, मैं कुछ हाँ किवें समझ गया। इहनू कहिंदे ने संत आराम के। कहने लगे

मात गर्भ में आप सुमिर न दे अग शीतलता का सुमिर बसंत मात गर्भ में अपन सिमरन दे तैं तुम राखन हारे मात गर्भ की अग सिमरन की शीतलता दोहां दा मिलाप ते बसंत रुत उसे नूं कहिंदे ने जिथे गर्मी ते सर्दी दा मिलाप इसे लिए जदों जीवन दे अंदर दे जीवन दे बारह माह की गल शुरू की उन्हें चेत तो शुरू की बसंत जीवन सी अग ते पानी दे सुमेल पर होया कि जदों संसार विच आया वो जिहड़ा सिमरन सी ना वो टुट गया लिव छुटकी लगी पिछला केवल अग दे अधीन हो गया लिव टुट गया सिमरन चला गया उतों शुरू हो गई गर्मी विसाख जेठ आड़ बदल सिमरन तो टुट गया ना शीतलता उस अग वाले पासे जदों अग तो परेशान होया ते अरदास की थी उसने क्योंकि आती नहीं है इसलिए पिछली सारी लड़ी में इकत्र करना चाहिए जदों अग की तपत तो परेशान होया अरदास की थी कलमल होई मेदनी अरदास करे ने बुलाए सहम दे नाम दे चिट्टे शुरू हो गए सावन आ गया पर यह गल भी माया नू अग नू किन्नी देर बर्दाश्त होनी सी उन्हें की कीता विच भरम पैदा कर दिते कि धर्म है कि नाम है कि सदियां बीतियां ने अजे तक पुछी जाने नाम है कि धर्म है कि सिखी है कि क्योंकि भरम खड़ा हो गया उन्हें धर्म की नकल पाई वो बन गया पहाड़ दोए दुबदा कंफ्यूजन उन्हें विच भरम भुलाणियां हो गया जिथे भी पा दोए हो गए ना उथे भरम भुलाणियां हो जाए एक नाम दोए राह भुलाने पंचा भाई गुरदास जी दिया राम रहीम कहां दे एक नाम दोए राह भुलाने दो रात टुट गया हुण भादो जिहड़ा सी उह भरम दी निशानी सी एक पासे बारिश भी पै रही है दूजे पासे गर्मी भी पै रही है ना अंदर चैन है ना बाहर चैन है भादो की गर्मी जी जेठ आठ की गर्मी नालों भी खतरनाक है भरम की दुनिया जी अधर्मी नालों भी खतरनाक है पर सचेत होया ताकि सर्दी आ जाए वैस भादो को भी दुखी भरम के अंदर भरम नहीं कमाया जा सकता हुण की होया गुरु ने आख्या चंगा फिर आ उपराला कर भी सर्दी आ जाए अडंबर कर अश्न प्रेम ओ माहड़ा पहला अडंबर रुत सर्द अडंबर अस्तु कथ के हर प्यास जी अडंबर कर पहला अडंबर सी प्रेम दा उमाहा अश्न प्रेम उमाहा जिथे प्रेम दा उमा नहीं हुंदा उथे भी मिलाप दी सर्दी दी रुत नहीं हुंदी शीतलता नहीं हुंदी अगले महीने में कहने लगे हूं अपने कर्मों से भी शोध कर तेन पता होगा की करना कि गुना करके प्रभु मिलता है वो तैयारी हो गई हूं आया प्रभु से मिलाप का दिहाड़ा मंदिर को सारी गल समझाई उन्हें जो मिलाप होंदा है उदों की सुख होंगे ने जदों विछड़े होइए उनके की दुख होंगे ने ताकि तेनों मिलाप दियां घड़ियां का एहसास हो जाए कोई उड़ीक लग जाए हुण आया मिलाप का समय से एहसास होया जी फल गुण आनंद तो पार जना कह लगे मुड़ बसंत आ गए बसंत तो पुके हुए नू क्योंकि आप बसंत जगत सब वारी क्योंकि रब नू बसंत आख्या गया है लिव छुटकी लगी तिश्ना ते बसंत तो टुटिया सी गुरु ने बहु फड़ के सारिया रुत्तां दा नजारा दिखा के आ तेनू मुड़ बसंत ते पहुंचा दिया।

इस पुण्य बड़भागी भर पाया हर राय हम ख्याल करियो जदो प्रभु दा मिलाप दा सुख मिल जाए ना फिर उन पता लग जाए भी ये सुख की है फिर गल्ला झूठियां नहीं हुंदियां फिर सहेलियां जदो बहिंदियां ने ना आपस विच फिर ओ हड बीतियां प्रभु दे प्रीतम दे मिलाप दियां गल्ला आपस विच सांझियां करदियां लो आ साध संगत की प्रभु दे मिलाप नूं मानन वालियां सखियां दा मिल बैठना तो मिल के फिर प्रभु दियां गल्लां करदियां ने मेरा साजन मेरा प्रीतम क्यों गया उनके विच की आदतां ने उनके मिलाप विच की सुख है उन्हें मेरे लिए की सुखां दे उपराले कीते ने जदों सहेलियां मिलदियां ने इहो गल्लां करदियां ने ते गुरु कहिंदे ने जदों सखी सखियां साध संगत दे रूप विच मिलदियां ने गुरसिख उदों मेरे रब दियां इहो गल्लां करदे ने